दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के 702 एपिसोड में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और आज हमारे साथ हमेशा की तरह शामिल हो चुके हैं शाहिल शरण जी जो हमारे साथ देंगे पेनलिंग पे और साथ साथ हमारे गेस्ट जो आ चुके हैं आज के लिए जो है धीरू जी धीरेन्द्र जिसे हम ज़्यादा करके धीरू जी के नाम पर जानते हैं और साथ साथ में संजय। और हम आज जो विषय जिसके बारे में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे वही ग्रैंड कीर्तन संध्या, तो उसके जो पूरी समाचार है आज आपको इस एपिसोड में मिलेंगे। और साथ साथ में हम शिवनील को भी शुक्रिया करेंगे जो समय निकाल के हमारे साथ आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, जो हमारा जो आज वीडियोग्राफी संभालेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम हमेशा की तरह क्या करेंगे कि

0: एक गीत साहिल ने कुछ साहिली से अभी एक्साइटेड कोई अच्छा कोई गीत हमारे लिए ढूंढा है इसलिए बजाने की कोशिश करा तो साहिल आपको हम समय देंगे. तो साहिल इज गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग फॉर अस और उसके बाद में हम अपना जो इंटरव्यू जारी करेंगे. और उससे पहले साहिल तो आपका जो स्पोर्ट्स की दुनिया में जो कुछ हो रहा है तो आई गेस आप एक्साइटेड हो कुछ शेयर करने के लिए.
1: नहीं अभी नहीं.
0: जी हाँ तो हमारे जो क्रिसडस डिन गो दैट वेल बट
1: बहुत खराब रहा.
0: थोड़ा ज्यादा ही खराब था. एनीवेज थोड़ा आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो गया था. वी वर होपिंग बिकॉज हम जब क्रुसेडर्स उतने दूर नॉर्मली पहुंच जाता है देन उसका जो वे बैक मुश्किल होता है. देन वी वर आई मीन इट्स नॉट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग अ विन बट एटलीस्ट वी वर एक्सपेक्टिंग अ मच मच बेटर आउटिंग यानी कि काफी क्लोज गेम बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने को नहीं मिला. बट द अदर वे अगर देखा जाए तो फीफा वर्ल्ड कप ये चल रहा है एंड न्यूजीलैंड नथिंग येट टू प्ले है जो उसकी भी तैयारी हो चुकी है. ईरान इज देयर सो आई थिंक इट्स गुड हम वो भी गेम देख पाएंगे. लेकिन कुछ गेम्स हो चुके हैं. I think Mexico draw था.
1: They won.
0: And the next one was I think Canada ना.
1: Canada was 1-1 draw.
2: US अभी भी जीता है.
0: अभी USA ये Paraguay ना तेरे बीच में. 4-1 against Paraguay.
3: Last second goal.
0: जी हाँ. तो अभी next game कौन सा है?
1: Next game.
2: आप कल सुबह होगा.
0: हाँ.
2: कल सांझ को देखना है 4 बजे Australia का game है.
1: Australia game.
0: Which is good. Socceroos, if I'm not wrong. जी तो जो काफी जो गेम्स भी चल रहे हैं सो एंड देन All Blacks का भी गेम आ रहा है अगेंस्ट फ्रांस और हमेशा कहते धीरु आपने टिकट तो ले लिया होगा. क्योंकि जो लोग हमारे तरह जो देर में टिकट ढूंढते नहीं मिलते धीरू ऑलरेडी टिकट ले चुका होता तब तक. एनीवेज जो आज हमारा टॉपिक है ऑब्वियसली स्पोर्ट्स नहीं है एंड वी विल गो एंड वी विल टॉक अबाउट ग्रैंड जो कीर्तन संध्या यहाँ पे और जो लोग हमें ज्यादा करके फेसबुक पे देखते हैं तो वी विल बी स्विचिंग ऑन फेसबुक आफ्टर दिस सॉन्ग. तो चलो साहिल हम गीत सुनते हैं उसके बाद भी हम एक ये जो इंटरव्यू करेंगे अबाउट 15 मिनट का रहेगा एंड वी विल ट्राई टू कैप्चर एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल. इससे जो जो ये जो कीर्तन संध्या आ रही है यानी ये जो सत्संग सनातन सत्संग बॉयज से क्रश है जो ला रहा है तो उसके विषय में बात करेंगे. और उसके बाद में हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है हमने एक इंटरव्यू किया था डोमिनिक इज अ कैंडिडेट फॉर न्यूजीलैंड लेबर पार्टी तो हम वो भी आपको सुनाएंगे. इट इज पार्ट ऑफ आवर केवाईसी यानी कि नो योर कैंडिडेट और हमारा जो मोटिव है जस्ट फॉर यू टू लेट यू नो अबाउट योर कैंडिडेट जस्ट टू बी अवेयर कि वो क्या करता है क्या नहीं एंड हिज व्यूज एंड ओपिनियन. इट्स नॉट ए इलेक्शन कैंपेन तो अभी हम नहीं कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट तो वी आर जस्ट लेटिंग यू नो बिकॉज हमारा जो एंड गोल रहेगा to encourage you to vote in the coming election. To chalo sir, gaye geet sunte hain.

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथियों, आपके पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के प्रोग्राम में। मैं हूँ प्रेम डॉक्टर विनेश और ये हमारा 703 एपिसोड है उन प्लेन से मीडिया। और हमारे साथ आज दे रहे साहिल ऑन पेनलिंग प्लस जो शिवनील जी हमारे वीडियोग्राफी में हेल्प कर रहे हैं। जो लोग हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन हो रहे हैं उसका भी शुक्रिया करेंगे। और जैसे हमने पहले फ्रिक्वेंसी पे बोल रहे थे कि हमारे पास जो गेस्ट है जुड़ चुके हैं, हम स्वागत करते हैं धीरू जी को और संजय जी को हमारे से स्टूडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड कीर्तन संध्या, ये जो पोस्टर आप देख रहे हो फेसबुक पे, तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे। पूरी जानकारी जो आपको देंगे काफी एक्साइटिंग है। ये रहेगा 18th of July, बहुत दिन नहीं बचा है। तो इफ यू आर, अगर आपका कैलेंडर फ्री है तो जरूर मार्क कर ले 18th of July, और समय है फ्रॉम 7 PM। तो इट्स अ गुड न्यूज है कि ये आ रहा है। और आई एम श्योर दी जो टीम है काफी जो मेहनत कर रहे हैं टिकट्स बेचने के लिए, सनातन सत्संग बॉयज क्राइस्टचर्च, और कुछ टिकट हमारे पास भी है। तो अगर आपको लेना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हो, अदरवाइज जो भी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो धीरू जी, आप बताइए कि आज आपका समय कैसे बीत रहा है?
1: ओ, समय तो बढ़िया है। अभी तो हमारे भी नाती भी आए घर पे, आज सैटरडे को तो दिन तो बहुत जिस तरह से कटता अभी तो
0: पूरा फुल ऑन बिजी करके रखा हुआ,
1: फुल ऑन बिजी है। फिर तुम जानते हो घर से काम भी करते हैं तो मैकेनिकल, तो वो भी चलता रहता है, तो बिजी।
0: जी हाँ बिल्कुल। तो धीरू जी एक क्वालिफाइड मैकेनिक है, जो मैकेनिकल काम वगैरह है। अगर आपको भी कुछ गाड़ी का कुछ इश्यूज है देन डू कॉन्टेक्ट धीरू, और घर से भी कर रहा है तो विच इज गुड। और संजय, आप बताइए कि आपका दिन कैसे चल रहा है? मुझे मालूम है आप काफी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हो और अभी आप फीफा का पूरा आपका पास नॉलेज है।
2: जी जरूर जरूर, सुबह जल्दी उठे, ओपनिंग सेरेमनी तो मिस कर दिया, थोड़ा गेम देखे, फिर आज सैटरडे है, शॉपिंग का दिन था तो हमने शॉपिंग किया, फिर घर वापस आकर वाइफ वो जॉब पे है तो कुकिंग वगैरह करे, थोड़ा काम किए घर के, फिर समय निकाल कर हम यहाँ आ गए।
0: जी हाँ बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि जो आपके बेटे आपको मदद करता होगा।
2: जरूर जरूर। आज सब्जी नहीं काटा है।
0: नो वरीज। तो चलो इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जो ये ग्रैंड कीर्तन संध्या अनु क्राइस्टचर्च इस नथिंग न्यू टू। जब हम कीर्तन की बात करते हैं, जो काफी मंडली यहाँ पे है क्राइस्टचर्च में बहुत सालों से, और जो कीर्तन भजन सब चलते रहता है, कभी कभी कवाली वगैरह भी हमें देखने को मिलता है, और त्रिकुट्टू वगैरह काफी प्रसिद्ध है क्राइस्टचर्च में। और This one is on 18th of July. तो आप बताइए धीरू जी, कौन कौन कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं?
1: जी हाँ, यहाँ के तो एक हमारा खुद का अपना कलाकार है जो क्राइस्टचर्च का, जिसका पहला बार हम लोग एक बार और स्टेज दिए थे लास्ट ईयर, निमित। ये भी बहुत अच्छे कलाकार हो गए, अभी अपना एक एल्बम भी निकाल दिया है, तो ये निमित है। और दूसरा रानी भी, जिसका पहला

0: स्टेज हम ही लोग यहाँ पे क्राइस्ट में दिए थे, तो वो भी आ रही है, तो इस बार वो हम लोग ये सत्संग बॉयज उसको बेकिंग कर रहे हैं स्टेज पे, और निमित के बेकिंग के लिए ऑकलैंड से टीम आ रहे हैं, जो कि उसमें लिखा हुआ है जय भो बॉयज की,
1: निमित का लिखा हुआ है कि सपोर्टेड बाय भक्ति सत्संग बॉयज ऑकलैंड।
0: ये सब जानते होंगे दिव्यन कवाल जो उसी का ग्रुप है, वो भी शायद आएगा साथ में इसमें, तो वो भी उनके कोरस टीम में होगा साथ में।
1: ओके, और ये आई मीन पोस्टर जब मैं देख रहा हूँ, इनका फोटो देख रहा हूँ, तो काफी यंग लग रहे हैं।
0: हाँ, बहुत बहुत कम है जो, तो निमित तो भी हम लोग सामने से
1: बजाना
0: बजाना, और इसके इसमें बढ़िया बात एक और क्या है कि इसका भाई वो ढोल बजा रहा है, निकल पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए, स्पेशली इन लोग के जो आजा जी है वो बहुत भारी टाइम निकालता है इन लोग के वास्ते, तो वो मुझसे भी कभी बोलता है कि कुछ रे बैठा ऐसे देखते रहना कुछ काम, तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग यंग टैलेंट आगे निकले, तो इसीलिए तो हम लोग ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे, तो फिर क्राइसिस में कोई बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाओ, तो ताकि उनका भी कुछ नाम चले ना।
1: जी हाँ, सही बात है। और अगर धीरू जी की बात की है जो अभी हमें सुन रहे हैं, स्पेशली जो हमारे जो फिजिक जो क्राउड है यहाँ क्राइसिस में, तो दे आर ऑल अवे, बिकॉज हार्डली कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे धीरू नजर नहीं आएगा। विल बी दे सम हाउ कि चाहे स्टेज पे होगा, कहीं भी वो सपोर्ट ऐसा दिखेगा, और कभी कभी वो स्टेज पे गाते भी हमें देखने को मिलेगा। सो थैंक यू धीरू फॉर डूइंग दैट, यू आर ऑलवेज देयर, डजंट मैटर कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, आप पहुँच जाते हो, विच इज ग्रेट। हमें ऐसे ही सहयोग की जरूरत पड़ती है। और जब बात करते हैं ये सब हमारा जो कीर्तन भजन होता है या जिस तरह हम रामायण पढ़ते हैं, ये सब हमारा अपना कल्चर है जो बहुत, अभी तो गिरमिट डे भी आ रहा है, तो उस पर भी मैं बोलूँगा कि एवरी टाइम वी कीप ऑन सेइंग दिस, एंड द रीज़न फॉर सेइंग दैट इज़ बिकॉज ताकि हम बार बार आपको याद दिलाते रहे, ये हमारे जो पूर्वज थे, एंड फॉर देम इट वॉज वेरी प्रीशियस। उन्हें लाना बहुत कुछ था, लेकिन वो सभी कुछ तो नहीं ला पाए, लिमिटेड था, इसे कम ही कम उसको लाना था, दे हैड टू चूज, बट उन्होंने चूज किया जो रामायण बुक हुआ या ऐसा कीर्तन भजन, वो सब वो लाए फिजी में, और वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ से जब हम चले लाइक वी केम टू न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी गए, सो वी हैव केप्ट इट। और काफ़ी लोग हमें बोलते हैं, इवन हमारे बहुत दोस्त है साथी फ्रॉम इंडिया, दे ऑलवेज है कि ये ना तुम्हारा काफ़ी जो रामायण मंडली वगैरह हो रहा है, ज़्यादा करके जो लोग इंडिया से भी जल्दी आए हुए हैं, तो दे मिस इंडिया, कि वहाँ पे उन्होंने मंदिर वगैरह जाते थे ना, तो यहाँ लोग पूछते कि मंदिर कहाँ है पे, और फिर बोलते हैं कि तो तुम्हारे जो फिजी मंडली से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अभी भी उस तरह जो रामायण वगैरह कायम रखे हुए। सो थैंक यू, हम आप लोगों को शुक्रिया करेंगे संजय और धीरू फॉर डूइंग दैट। और जैसे अभी आप बाद में अगर फेसबुक पर हम पोस्टर भी डालेंगे, तो आप देखोगे कि जो ये जो कलाकार है, दे आर वेरी यंग, देखने में यंग है, और निमित्त तो हमारा ही, हम बच्चे कहेंगे, हमारे सामने वो लोग बड़े हुए हैं, दो भाई थे और बहुत प्रसिद्ध है, बिकॉज बड़ा अच्छा लगता था उनको देख के, दोनों भाई जब बजाते थे गाते थे, तो आज देखो बड़े हो गए। और धीरू, यू मेंशन कि उसके एल्बम निकला, तो एल्बम क्या उसने यूट्यूब में डाला हुआ या?
0: हम सोचता कि सीडी भी है, यूट्यूब में भी है उसका, तो उसका अभी लास्ट ईयर तो जाकर के हम सोचता वो उसका बैकअप यही बॉयज लोग किए थे, ठीक है, ऑकलैंड का।
1: No, we will try to find the link, हम पता लगाएंगे कि लिंक कहाँ पे, then we will try to put it on this video as well, उस पर हम नीचे कॉमेंट्स में डाल देंगे, so that you can go and look at it, काफ़ी अच्छी। एंड वी एक्चुअली हम इनकरेज करते हैं, हम चाहते हैं लोग थोड़ा सहयोग दें इस तरह के कलाकार के लिए, सो दैट हमारे जो बच्चे जनरेशन है, जो अभी भी बच्चे होंगे, एंड दे आर लर्निंग, या टू एनकरेज देम, बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर ऑफ दोज, बिकॉज संजय हम आई थिंक हमारा तो कोई समय आएगा, हम रिटायर तो होंगे ना किसी
2: जरूर जरूर
0: अभी एक शो और करके
1: फिजी में
0: हाँ, जो खुद हमारा जो मंडली था वहाँ पे जसोरी में, नेताला से शेर
1: जसोरी,
0: हाँ, तो उसका ये भी, ये लोग, इसका नाना भी उन्हीं का, वही
1: काफी बड़ी बात है कि हम ज्यादा करके सुनते हैं कि फिजी से कलाकार यहाँ आते, फिजी से यहाँ आते थे, यू नो, जब कोई आता है जो कीर्तन भजन, या फिर आई थिंक दैट थिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था, होली में क्या प्रण गाते हो,
0: फाग
1: जगह, अलग अलग जगह का जो अलग अलग स्टाइल ऑफ फाग होता है ना, वो लोग जब आते हैं तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है। देयर वाज इवन टाइम जब हम ऑकलैंड से कलाकार आते थे, लेकिन नाउ हमारे कलाकार जाकर फिजी में अगर परफॉर्म करते तो बहुत बड़ी बात है।
0: अभी रानी भी तो फिजी के दौरा पे है, अभी कुछ पूजा उन लोगों का, पूजा के बाद में कुछ कीर्तन भी है उसका, तो उसके बाद में वो आकर फिर यहाँ की तैयारी करेगी। तो अभी मैंने उससे लाइटली बात किया था, तो उसके पिताजी से, तो उसने कहा कि जब हम लोग पीजी से आ जाए तो फिर हम उसका तैयारी में लगे, क्योंकि हम लोग के भी इसके कोर्स के लिए
1: देट वॉज माई नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मैं नेक्स्ट पूछने वाला था कि नॉर्मली जो जहाँ का होता उन्हीं का ग्रुप, उनका जो

0: मेकअप करेगा ना, बिकॉज साथ साथ में प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा. बट यहाँ पे क्रोस है, यानी कि अमित सॉरी निमित का जो बैकअप ओकलैंड वाला जो सत्संग वॉइस कर रहा है, और रानी जो एक्चुअली ओकलैंड की है, उसका बैकअप आप लोग कर रहे हो, तो कैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे?
1: देखो क्या है कि हम लोग के पास बोझ, इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कि हम लोग सिर्फ ये जानना है कि वो क्या गाएगा. तो और फिर जैसे जो स्वर होता है, राग होता है, कैसे मिलाना है, कैसे वॉइस मैच करना है, वो सब हम लोग ट्रेनिंग में कर लेते हैं. तो इसके लिए बहुत कड़ा नहीं होता है, तो एक ट्रेनिंग हम लोग के लिए काफी होता है. और फिर नॉर्मली जैसे ये पहली बार नहीं है हम लोग, जैसे ये लगभग थर्ड होगा जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन ट्रेनिंग करके नेक्स्ट डे हम लोग स्टेज उतरते हैं.
0: ठीक है, वैसे भी और भी सवाल है पूछने के लिए, बट आई विल मूव टू संजय. तो संजय आप बताइए कि ये जो टिकट प्राइस क्या है?
2: टिकट का प्राइस $15 है, उसमें खाना इंक्लूडेड है, डिनर प्रोवाइडेड, और हमने डोर ड्रो भी रखा है, 5 प्राइस है. तो ये प्राइस सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो उस दिन अटेंड करेंगे.
0: रिटर्न फ्लाइट टू फिजी,
2: रिटर्न फ्लाइट. ये रखने के लिए महत्व तो ये है कि आप लोग पधारे और आकर हमारा शो देखे और इन बच्चों का उत्साह बढ़ाए और हमारे धर्म के कार्यक्रम में आगे बढ़े.
0: जी, और ये जो $15 आप बोल रहे हो जो टिकट है लोग पे करेंगे, I'm guessing it's pay person, और इस any limit like बच्चों का?
1: under 12
0: फ्री रहेगा. जी हाँ, तो अगर आपको $15 पे करना है, यू कैन कम, और अंडर 12 फ्री रहेगा. और जो $15 जब लोग पे करते हैं तो उसमें आपने भोजन आई थिंक मेंशन किया ना?
2: जी जरूर.
0: तो साथ में
2: डिनर प्रोवाइडेड है.
0: जी,
2: आप आए, मनोरंजन उठाए, काफी अच्छा भोजन होगा.
0: जी हाँ, बिकॉज आई थिंक पहले समय था कि आई थिंक कुछ $11-12 में आपको भोजन मिल जाता था, बट आई थिंक अभी अगर आप भोजन अगर देखोगे तो आई थिंक
2: खर्च बढ़ गई
0: है,
2: इसलिए हमको थोड़ा प्राइस ऊपर करना पड़ रहा है.
0: तो आई थिंक $15 इन अ वे अगर आपको भोजन साथ में दे रहे, देन इट्स काइंड ऑफ रीजनेबल या चीप भी बोल सकते हो.
1: अभी
0: सभी नहीं मिलता ना.
1: अभी एक चीज पे हम लोग और उस पर थोड़ा बात कर रहे हैं कि जैसे अभी फ्यूल प्राइस बहुत महंगा है, तो जैसे अगर शायद एस बेटन से उधर से कोई आया डाउन साउथ से, तो शायद हम उनके फ्री एंट्री रखेंगे.
0: ओके,
1: उनके होम सिटी को आकर किंचन सुने, वो लोग ऑलरेडी उतना खर्चा करके आएंगे.
0: अरे हां, एग्जैक्टली, फ्यूल लगता है. जी हां,
1: तो हम लोग वो अभी बात कर रहे हैं, तो और इसमें सिर्फ हम लोग के ऊपर है, हम लोग यहाँ कितना टिकट बेच ले तो उन लोगों को उतना फ्री कर सकते हैं.
0: एग्जैक्टली, तो आई थिंक द अदर थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट, काफी लोग देख रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा चीज है, और काफी लोग है लाइक हु एक्चुअली सपोर्ट दिस काइंड ऑफ इवेंट्स, बिकॉज काफी लोग है जो धर्म से काफी जुड़े हुए हैं, एंड वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि धर्म आगे बढ़े, लेकिन ऑब्वियसली अब सभी लोग के वो नहीं होता है कि everybody has that time to do it. आप लोग कर रहे हो तो sometimes they want to support in some way, चाहे पैसे दे के जो कुछ भी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट या जैसे भी, अगर सपोर्ट बन सके, अगर दे सके तो. संजय जी बताइए किसको लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना है?
2: जी हाँ, प्रेसिडेंट धीरेन्द्र कुमार धीरू जो हमारे साथ बैठे हैं, उनके को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. उनका फोन नंबर है 0210537361, और हमारे ट्रेजरर साहब है बिमलेश शर्मा, उसको भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0223789309, और सेक्रेटरी साहब है रवि कुमार, आप उसको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0221532244. इसके अलावा दुकान में पोस्टर भी लगा है, तो आप वहाँ पे भी ग्रोसरी शॉप जो इंडियन शॉप्स होते हैं वहाँ पर भी पोस्टर लगा, उस काउंटर पर जाकर आप इंक्वायर कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको टिकट मिल सकता है.
0: जी हाँ, तो आप अगर टिकट लेना चाहते हो देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट दोस शॉप्स, या तो फिर जैसे हम ये पोस्टर हम डाल देंगे फेसबुक में, सो दैट इज इजी, आपको नोट नहीं करना पड़ेगा, सो यू कैन कॉन्टेक्ट देम, या फिर हमें भी आप संपर्क कर सकते हो. हमारे पास अभी भी हाथ में जो टिकट रखा हुआ, अगर आपको चाहिए देन यू कैन ग्रेब दोस टिकट्स, अदरवाइज डो पे तो हर वक्त रहता है ये टिकट्स, अगर आप
2: नहीं बाय कर नहीं मिला तो
0: डो पे तो जरूर मिलेगा. बट अगर आप पहले से ले लोगे तो जैसे धीरू जी बोल रहे हैं कि उसको आंकड़ा मिल जाता है, एंड दैट वाई ही कैन वेक आउट कि जो ये लोग दूर से आते रहे, फॉर एग्जाम्पल बेटन, आई नो देयर मेनी जो मंडली ओमरू तक है, क्योंकि प्रोग्राम होता है लोग उम्र से भी आते हैं सो इफ दे वांट टू कम एंड ट्रैवल देन आई डू एग्री विद धीरू और हम कहेंगे काफी अच्छी बात कि आप लोग कंसीडर कर रहे हो कि उन लोगों को फ्री एंट्री मिल जाए बट इट कैन ओनली हैपन इफ इट कैन बी सब्सिडाइज्ड और ये हो सकता है कि अगर यहाँ के जो लोकल्स इफ दे कैन कंट्रीब्यूट बाय टिकट्स

0: या तो फिर अगर आपको अगर डोनेशन वगैरह देना है जस्ट बिकॉज इट्स गोइंग टू अ गुड सॉन्ग गुड कोर्स और ऑलरेडी जो ग्रुप एस्टेब्लिश्ड है सत्संग सनातन सत्संग बॉयज क्राइस्टचर्च तो डोनेशन आप दे सकते हो ताकि इन मनी विल ऑब्वियसली गो टुवर्ड्स दिस इवेंट और मे बी जो फ्यूचर इवेंट भी होते रहता है आई नो दिस ग्रुप इज क्वाइट एक्टिव आप लोग काफी जो कार्य करते रहते हो एंड सो दैट इट कैन गो टुवर्ड्स दैट तो अगर आपको ऐसा कुछ है देन डू कॉन्टेक्ट अस फील फ्री ताकि हम इस विषय में बात कर सके और चलो संजय जी बताना है कि हमें कहाँ पे आना है
1: हमको टेम्पलटन हॉल पे आना है वहाँ पे कार्यक्रम होगा शाम को 7 बजे शुरू होगा आप समय से आ जाइए आपको पता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है तो अगर आप समय से आएंगे तो ज़्यादा गीत सुनने को मिलेगा तो इसलिए आप समय पे आ जाइए
0: आई थिंक क्राइस्टचर्च या तो फिर न्यूजीलैंड का हम जनरली यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम का क्या हो जाता है कि अगर देर से स्टार्ट करेंगे तो कर सकते हो लेकिन आप देर से खत्म नहीं कर पाओगे आपको टाइम पे ही खत्म करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू क्लियर द होल और समय पे होल पे देना पड़ता है अगर आप टाइम पे होल क्लियर नहीं करोगे नहीं सौंपोगे देन दे एक्चुअली चार्ज पेनल्टी तो काफी टूटा हो जाता है तो इसीलिए इफ यू कैन सपोर्ट बाय कमिंग ऑन टाइम ताकि जो जो लोग इस पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स कैन स्टार्ट ऑन टाइम ताकि एज संजय बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ कीर्तन लोग ज्यादा गा सके या तो फिर जो प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग किया है ना सभी आपको लोग सुना सके तो अब ना हम चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है धीरू जी इसमें कावा क्या क्या
2: ऑर्गेनाइज किया कावा हम लोग सेल्स करेंगे बट डिपेंड्स अभी देखो जैसे मैंने इसमें बहुत बहुत ज्यादा कोशिश की सब कुछ मैंने बहुत स्पॉन्सर खोजने की कोशिश किया तो मैंने मुझको कुछ स्पॉन्सर से मिला तब मैंने कुछ प्राइस लिमिट किया अगर हमारा और जैसे कुछ और डोनेशन हो गया और टिकट अच्छा सेल्स हुआ तो शायद कावा भी फ्री कर देंगे तो ये सब डिपेंड्स ना
0: मुझे मालूम है कि अभी कॉस्ट बढ़ चुका है एवरीथिंग कॉस्ट इवन खाने का अगर बात करोगे कोई बना रहा जाए पुलाव बनाओगे जो भी बनाओगे बट सामग्री बाय द टाइम आप बाय करते हो तो काफी हो जाता है तो इट्स नॉट नो चीप दिस डेज
2: फिर कावा भी वैसे भी अभी 170
1: ये फंड रेजिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने फॉर्म किया क्राइसिस में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होता है कहीं मरनी हो गया रामायण हो गया या कोई कार्यक्रम हो गया तो हमको कॉल करते हैं सपोर्ट करने के लिए तो हम उनके घर पर जाकर कीर्तन वगैरह रामायण वगैरह में सपोर्ट करते हैं तो हम उनसे कोई
2: पैसा
1: चार्ज या पैसा नहीं लेते लेकिन फिर भी हमको रन करने के लिए हमारा संस्था के लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत है तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है कुछ हमारे पास कुछ फंड आ जाए और इसके बदले में हम आप लोगों को थोड़ा ज्यादा बेहतर सेवा प्रदान कर सकें तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारा वही है तो इसलिए हम ये प्रोग्राम को रच रहे हैं और आशा करते हैं वाइडा क्राइस्टचर्च आकर हमको सपोर्ट करें ताकि फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़े तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे तो यही हमारा उद्देश्य है
0: जी बिल्कुल तो जैसे आपने सुना है फ्रॉम संजय धीरू इफ यू कुड सपोर्ट दिस गुड कॉज और हमारे धर्म के लिए है तो दैट्स वन वे ओर द अदर जैसे हमारे धर्म कहता है कि यू कैन सपोर्ट अपना जो योगदान दे सकते हो वन वे ओर द अदर काफी वाइज है तो डू कॉन्टेक्ट देम अगर आपके पास कुछ आइडियाज हो या थॉट्स हो या तो फिर आप डोनेशन देना चाहते हो सो दैट इट इज अ सक्सेस और जैसे हम हर वक्त कहते हैं कि ये एंड नहीं होता है और ऑब्वियसली बिगिनिंग भी नहीं है बट इट विल कीप ऑन गोइंग बट आपका जितना सपोर्ट है तो उसी पे आधार होता है कि आगे क्या होता है और धीरज जी आप बताइए कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो कीर्तन भजन या कुछ होता है उसका कोई थीम कुछ होता है इसमें कुछ थीम वगैरह किसी थीम पे लोग गाएंगे
2: ना ना
0: जनरली
2: होगा
0: हाँ। जी हाँ तो सभी तरह की कीर्तन होगा
2: जैसे नॉर्मली शुरू होता है ना गणेश जी का करते हैं सरस्वती का फिर हनुमान जी का इसी तरह से बस चलेगा सब कीर्तन
0: जी हाँ तो बड़ी अच्छी बात है तो जैसे हमने सुना कि जो निमित सिंह है तो हमारा जो यहाँ का जो बच्चा है फ्रॉम क्राइस्टचर्च और साथ साथ में जो रानी मुदलियार जी है जो शी इज फ्रॉम ऑकलैंड और अभी जैसे धीरू ने बोला है शी इज ऑन फिजी टूर तो ये होगा और द डेट इज 18 जुलाई आई थिंक सैटरडे पड़ता होगा ना
2: सैटरडे
0: जी हाँ तो इट्स सैटरडे इवनिंग 7 PM टेम्पलटन हॉल जो 64 Cake Road है और इफ यू कुड कम ऑन टाइम बिकॉज कभी कभी ट्रैफिक अभी तो ट्रैफिक भी बढ़ रहा है
2: इसमें एक बात और बोल दे विनेश जी हम लोग जैसे अभी जैसे जो साउंड सिस्टम हम लोग का है तो साउंड सिस्टम कैन इमेजेस कर रहे हैं और

0: और जो साउंड कंट्रोल करेगा वो डीजे मैक्स, वो ऑकलैंड से आ रहा है। तो क्योंकि मैं जहाँ पे अभी एक लेटली एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने देखा था, तो इन लोग का साउंड सिस्टम से रखना दूसरा सिस्टम से होता है ना, क्योंकि बहुत जगह होता है बहुत ज्यादा वो ब्लास्ट कर देते हैं, दो स्पीकर रखे तो ये लोग क्या करते हैं, तीन चार स्पीकर लाइन से रख देते हैं, तो नॉर्मल साउंड तुम ऐसे सुनोगे कि
1: सराउंड होता है। थैंक यू सो मच, बिकॉज एक्चुअली मेरा जो ईयर्स थोड़ा सेंसिटिव है, ऐसा हल्के पता है कि उतना लाउड में फिर मैं धीरे धीरे चला जाता हूँ, बिकॉज मैं बहुत नहीं स्टैंड कर पाता हूँ। मैं नहीं बोलता कि कोई बुरा गा रहा है कुछ, बट यही कि हमारे जो ईयर ड्रम सभी का अलग अलग होता है, तो मेरा थोड़ा सेंसिटिव पड़ता है जब साउंड्स की बात आती है, तो मुझे वो मीडियम ही चलता है, बहुत ज्यादा होता है तो तकलीफ होती है। एक समय था जब नाइट क्लब्स वगैरह चल जाता था, लेकिन अभी अभी नहीं, अभी तो अफेक्ट हो रहा है सब, तो बट इट्स गुड कि आप लोग ये सब कर रहे हो। और चलो हमारे पास थोड़ा कुछ समय बचा है अकॉर्डिंग टू साहिल, बिकॉज हमारे पास जैसे हमने बोला था एक इंटरव्यू हमने किया था डोमिनिक यांसिक, जो लेबा कैंडिडेट है, जो विग्रम जहाँ पे मेगन वुड्स अभी तक जो इलेक्शन की जो एमपी है, तो उसके जगह अब ये खड़ा रहेगा आपकी इलेक्शन में, क्योंकि अब एमपी जो मेगन वुड्स है, शी इज नॉट गोइंग टू स्टैंड फेयर इन द इलेक्शन, तो हम आपको सुनाएंगे। और जाते जाते द अदर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क इज, आपके जो स्पॉन्सर्स है उनको आप याद करना चाहोगे?
0: जी हाँ, स्पॉन्सर्स, हाँ, ये लोग तो भाई मेन होते हैं हमारे लिए।
1: हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं धीरू ऑटोमोटिव।
0: जी हमारा तो सभी जगह रहता है, तो मनीष ग्रुप्स ऑफ कंपनीज ये है, और फिर यूनिक मोटर्स है, सैंडल पैनल पेंट, धीरू ऑटोमोटिव, और हमारे शायद तुम जानते हो रिचर्ड सेवक।
1: हाँ, रिचर्ड सेवक लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस के जो रिचर्ड सेवक है जी,
0: ये उसका है। और अभी हमारे एक नए पैनल बीटा, अभी नए पैनल बीटा पुराने नए बिजनेस खोले अपना कमलेश प्रसाद जी, तो उसने भी कुछ हम लोग का सहयोग किया इसमें। और फिर एक अकाउंटेंट है शायद तुम लोग जानने सरनस शरणा, तो वो भी हम लोग के वो अकाउंटिंग करता है, तो वो भी स्पॉन्सर किया। और एक हम लोग के इंडिविजुअल पेशन, और उसने खुद अपने आप बढ़ा हमारे पास कि जब उसने देखा कि हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि क्यों नहीं हम भी इसमें मदद करें, तो उसने भी हमको डोनेट करने की प्रोमिस की। और फिर सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी रूप प्रकाश जी बहुत हम लोग के हेल्प करते हैं सभी समय, हमारे ग्रुप में भी है, तो वो भोजन दे रहे हैं, और फिर दे नहीं रहे, बना भी रहे हैं साथ में। तो
1: जी, और शैंडल्स पैनल बीटर्स,
0: हाँ
1: शांडिल जी भी है, जी हाँ, जो शांडिल भी काफी जो प्रसिद्ध है कच्छ में। तो चलो, हमारा समय तो ऑलमोस्ट हो चुका है, हमें यही फिनिश करना पड़ा है, तो वंस अगेन दिस इज द टिकट्स, अगर आपको टिकट चाहिए यू कैन बाय टिकट्स, हम बच्चे जो इन्फॉर्मेशन अपने फेसबुक पे डाल देंगे। एंड थैंक यू धीरू जी और संजय जी दोनों जन को आने के लिए हमारे प्रोग्राम में, और बताने के लिए कि मोर अबाउट दिस जो अभी आपका इवेंट हो रहा है। और हम चाहेंगे जो लोग हमें अभी फेसबुक पे सुन रहे हैं, तो फिर जो फ्रिक्वेंसी पे भी सुन रहे हैं, आगे चल के सुनेंगे भी, इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इन एनी वे, डोनेशन वगैरह से इंडिविजुअल भी आपको देना है या तो गुप्त दान भी करना है, देन डू कॉन्टेक्ट दिस ऑर्गेनाइजर्स।
0: सही बात किया कि अभी गुप्त दान हम लोग कुछ मिला हुआ है, तो उन लोगों ने कहा कि नाम नहीं बोला, तो हम लोग अच्छा डोनर दिए, तो उसने कहा कि हमारा नाम नहीं बोलना, तो
1: जी हाँ, तो अगर आपको ऐसा भी कुछ करना है तो कीजिए, बिकॉज वंस अगेन ये जो हमारे धर्म की बात आती है, और अभी जो स्थिति चल रही है, जो भी चल रहा है, तो आई थिंक वी नीड टू फोकस, ताकि हम अपना जो धर्म बचाए रहे, और हमारा जो सनातन का जो झंडी हर वक्त लहराते रहे। तो इसके आपके हाथ पे, हमारे जो यहाँ पे धीरू जी संजय उसका जो पूरे जो टीम है, सत्संग बॉयज है, हम सबको शुक्रिया करना चाहेंगे कि दे आर डूइंग सच अ गुड जॉब, एंड ऑफकोर्स जो पंडित जी जो हमेशा खड़े रहते हैं पीछे आपके, तो थैंक यू सो मच। तो हम यहीं पर अपना जो लाइफ एंड, लेकिन जो लोग हमारे फ्रीक्वेंसी पे आप सुनते रहिए, क्योंकि इसके बाद में आपको जो हम इंटरव्यू सुनाने वाले हैं, सो शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।